0: and through UPI. Now, the investigation revealed that the accused had claimed to students that around 150 of the 180 questions in the actual exam would definitely match their mock paper. Now, the probe has suggested that the network operated in a highly organized manner through personal contacts and closed communication channels, and special care was taken to avoid large money transactions. Well, one of the accused, Yash, is alleged to have sold the leaked paper to Jaipur-based accused Dinesh, while Dinesh's son, himself a NEET aspirant, allegedly had prior knowledge of the paper leak and had planned to make money. Now, with two other arrested in the case, the total number of accused of the five accused. And in the meantime, CBI has widened its probe and is also involvement of insiders linked to the National Testing Agency. All right, we're cutting to Dharmendra Pradhan, who is now speaking regarding the NEET issue.
1: By the Parliamentary Standing Committee in December 2025 itself, 6 months later, we are standing in the same situation. NTA ke 14 mein se 5 papers mein irregularities ya gadbadiyon ki baat Parliament Committee ne khud kaha tha.
2: Dekhiye, main Parliamentary Committee ke mat pe nahi jaunga. Main Radha Krishna Committee ke mat pe jaunga, aapki mat pe jaunga, fact pe jaunga. Assumption pe nahi baat karenge. पॉलिटिकल टोन पे कम से कम आज तो मैं करूंगा, सारे का उत्तर मैं पार्लियामेंट भी दूंगा, भी सब एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हमने दिया है, हमने और पार्लियामेंट कमेटी की, विशेष करके जो प्रतिपक्ष के व्यक्ति बैठ जाते हैं कैसे लिखते हैं, फिर आप मेरे से आप भी ज्यादा, मैं आज कोई पॉलिटिकल उत्तर, आज वो माहौल नहीं है, मैं उसको नहीं देना चाहूंगा।
3: बड़ी संख्या में ये जो छात्र हैं उनका ये डिमांड है कि एनटीए को बदला जाए, एनटीए की जगह किसी और एजेंसी को जो है वो लाया जाए, क्योंकि बार बार एनटीए जो है वो मिसकंडक्ट कर देती है।
2: देखो, कोई ना कोई एजेंसी, मैंने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब की एक इंटरव्यू देख रहा था, कोई ना कोई एजेंसी तो करेगा ना, देश में अनेक जगह पे स्टेटों में भी ब्रीच हो रहा है, कोई एजेंसी वहां भी काम कर रहा है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकिल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। एनटीए कोई सरकार की निर्णय नहीं था, कुछ विसंगति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनो, उसमें से बनी है। एनटीए ने हर एक साल 1-1 करोड़ का काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, उसके दायित्व तो हम लेते हैं। व्हीकिल का इशू नहीं है, इशू है प्रोसेस की, चैलेंज की। सोचा मैंने कहा ना, ये अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी, सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं, ये सामाजिक व्याधि है, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की, ये कोई व्हीकिल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की, ये कोई एक व्याधि है, आपकी मदद में चाहता हूँ उस व्याधि को रोकने के लिए।
4: सर, एनटीए कह रहा था कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए 22 लाख बच्चों की परीक्षा के लिए वो कैपेबल अभी नहीं है, आपको लगता है नेक्स्ट टर्म तक हो जाएंगे?
2: चलो, अभी तो मैंने कहा बाबू, साल
5: भर में एक सवाल ये है कि क्या सर, एक सवाल ये चाहिए, क्या नीट 2025 भी संदेह के घेरे में था कि
2: नहीं
5: सर, इसलिए सवाल ये पूछा मैंने।
2: देखो, मैं आसम सन पे कोई उत्तर नहीं दूंगा, एजेंसियां काम कर रही है उनको करने दो।
3: सर एक सवाल, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है और लाखों बच्चों के भविष्य से, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था और भी सख्त करने की जरूरत है, जैसे कि जो भी अपराधी हों इसमें संलिप्त हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो सरकार के अंदर हो, सिस्टम के अंदर हो या बाहर के लोग,
2: कोई भी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक व्याधि एक भयंकर कैंसरस रूप ले लिया।
6: सर, अब कंप्यूटर में हो गई है तो क्या
2: हुआ नहीं।
6: मतलब अगले साल से होगी तो क्या यही देख सकते हैं कि शायद ऑफलाइन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी ग्राउंड पे या किस तरीके से? क्योंकि
2: देखिए, सारे विषय को मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी मदद मांगा, आप उसमें मदद करिए, धन्यवाद।